0: का अगाड़ी
1: फोन नंबर 01052248 मोबाइल नंबर 98414994.
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज.

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मान यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: वर्ष पेन
2: Extreme energy drink, time check. Only ठीक 7 बजे को था.
3: Extreme energy drink, taste the difference, feel the energy.
4: रेडियो धारी समय संकेत.
5: अहिले साँझको 7 बज्यो.
6: शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा.

0: हजुर, हामी कहाँ तपाईँले चाहेर भने जस्तै नयाँ सुनचादीका गर गहना अर्डर अनुसार तयार पारिनुका साथै बिहे व्रतबन्धका लागि रानीहार झुम्का नेकलेस बाला लगायत तपाईँले सोचे जस्तै पुराना गर गहनासँग नयाँ गर गहना साथफेर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। सुनचादी खरिद बिक्रीका लागि विश्वासिलो र भर पर्दो नाम सलाङ श्री अकला देवी सुनचादी पसल धादिङबेसी पुछार बजार।
1: अनिल सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841179070 र 9860222660।
2: रंग बहार रंग बहार
3: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: वर्ष पेंस्टेक हर रंग लकी ड्रॉ मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाने हो।
3: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बड़ी आकर्षक उपहार घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ।
2: वर्ष पेंस्ट